फौजी भाइयों के कार्यक्रम जयमाला में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए हमेशा की तरह कार्यक्रम का आगाज करते हैं देशभक्ति गीत के साथ। इस गाने को हमने लिया है फिल्म मिशन मजनू से। इसे गाया है सोनू निगम ने, गीत मनोज मुंतशिर का है, संगीत रोचक कोहली का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

सेना। अभी आपने सुना भारतीय सेना का गीत। गीत संगीत और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में है। इसे हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on India's new labor codes by Dr. Pradeep Kumar Jena, Director, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: ग्राहक केंद्रित प्रायोजित कार्यक्रम आपण ऐकला डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अँड जस्टिस हा कार्यक्रम आपण ऐकला पुणे विविध भारती 100

0: आपको सुनवा रहे हैं झलकी बलि का बकरा, लेखक और निर्देशक मुकुल गोस्वामी।
1: ओ, कौन है भाई? अरे खोलता हूँ। अरे मकान किराए का है, घर का नहीं। अरे दरवाजा तोड़ डालोगे क्या?
2: जे बेटे, दरवाजा खोलो, देखो कौन आए हैं।
1: अरे खोलता हूँ भाई, पूरी गैंग है। हाय कमरा,
3: खोल रहा है। नमस्कार।
1: 100-100 बार नमस्कार।
4: क्या
1: जी? मेरा मतलब है कि सबको सामूहिक और इंडिविजुअल नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: ओ, मेरे कान 6x6 के हैं, थोड़ा धीरे और दूर से बोलिए।
3: अंदर आने को नहीं कहोगे अजय बेटे?
1: अंदर ही तो हैं आप,
3: है?
1: फिर भी आइए। ये बोरिया बिस्तर सारा आपका ही है ना?
3: कमरा तो बहुत छोटा है बेटे, गुजारा कैसे होता होगा?
1: जी अकेले आदमी के लिए तो ठीक है।
3: अरे इस उम्र में इतनी चिंताएं, इतनी कुंठाएं, भाई तुम्हारे तो ऐश करने के दिन हैं।
1: जी
3: मौज करो।
1: जी शुक्रिया।
3: मैं जब तुम्हारी उम्र का था जय बेटे, तो खूब मजे करता था, महंगा खाया, महंगा पहना और महंगे लोगों से ही दोस्ती।
1: जी, वो छोटी सी सरकारी नौकरी में इतना कहीं बच पाता है?
3: अरे बचेगा, क्यों नहीं, खूब बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? तुम क्यों नहीं बोलती?
4: अजी बचेगा क्यों नहीं, 5-7 लाख तो उसे बचता ही है सालाना।
5: सालाना नहीं, महीने का बोलो मम्मी।
3: कितनी समझदार है हमारी रानी बिटिया, 2-4 लाख कमाना तो बाएं हाथ का काम है।
1: जी क्यों नहीं, वो तो शक्ल ही बता रही है।
3: क्या मतलब, क्या लिखा है हमारी शक्ल में?
1: अजी लिखा नहीं है, छपा है, 100-100 के नोट छपे हैं आपके चेहरे पर। भला संपन्नता कहीं छिपती है?
5: कितना अच्छा मजाक करते हैं, हरे हरे नोट नहीं काले काले नोट बोलो, और चेचक के दाग तो चांदी के सिक्के नजर आ रहे होंगे।
4: चुप पकड़ी कहेगी। अरे सबको थोड़े ही बताते हैं कि पापा काले कलूटी बैंगन का भुर्ता है। अरे सबके लिए तो वो फिल्मी हीरो है, स्मार्ट।
5: विलेन कहते शर्म आती है ना मम्मी।
4: भौतरी, जैसी शक्ल वैसी अकल, अब की बोली तो बची खुची दांत भी तोड़ दूंगी तेरे।
3: दरअसल क्या है अजय बेटे, कि वैसे मैं जहाँ भी जाता हूँ 5 स्टार में ही ठहरता हूँ।
1: जी क्यों नहीं, जहाँ भी यही सोचकर आए होंगे, अब तो देख लिया ना।
3: अरे चिंता क्यों करते हैं, कमरे का महल बनते कितनी देर लगती है क्या? बस जरा आदमी समझदार होना चाहिए, क्यों प्रिय?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे तुम भी तो शादी से पहले इसकी तरह ही कंगले थे
1: जी।
4: बस डैडी की बात मान ली और बन गए हीरो।
5: पापा फिल्मों में भी तो ऐसा ही होता है ना, हीरो कंगाल, हीरोइन अमीर, मेरे जैसी।
4: कितनी समझदार हो गई है हमारी रानी बिटिया। हाँ बिटिया, जरा अपनी उम्र तो बताना।
5: बता दूं मम्मी?
3: हाँ शर्माओ नहीं, बताओ।
5: मेरी उम्र है 20 साल 48 महीने 116 घंटे और 52 सेकेंड।
4: वाह वाह, देखा जे क्या मैथमेटिक्स है हमारी बिटिया की।
5: मैथमेटिक्स नहीं मम्मी, मैथमेटिक्स बोलिए।
3: अरे और आवाज देखी, एकदम रेडियो वॉइस, क्यों अज्जू?
1: जी बिल्कुल, अगर कथे सुन ले तो 2 साल तक शर्तियां रहे।

0: नहीं भूल जाएंगे। हाँ
1: अजी सुनते हो?
0: हाँ?
1: देखा तुमने? अरे अजय को भी भौतरी की तरह जानवर बहुत पसंद है। अजय
0: जी,
1: भौतरी तो जानवरों की दीवानी है।
0: क्यों नहीं क्यों नहीं, शक्ल भी तो उन्हीं पर गई है।
2: अरे अरे अरे अजय बेटे, मैं तो पूछना ही भूल गया, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई?
0: जी वो जोधपुर गई है बड़े भाई साहब के पास।
2: अधर्म, तब तो घोर अधर्म। अरे बिना उनके तो हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए।
0: बहुत ही नेक विचार है आपका, टांगा लाऊं आपके लिए।
2: वो क्या है कि अब आ ही गए हैं तो नाक ही तुम्हारा दिल क्यों तोड़े, तुम भी तो बुरा मान जाओगे ना।
0: जी, जी, जी, जी, जी नहीं, एकदम नहीं एकदम नहीं, मेरा मतलब है कि इसमें बुरा क्या मानना है
1: भाई, अपनों से क्या बुरा मानना, क्यों जी? ऐसा है अजय बेटे, हम जरा तुम्हारा बाथरूम देखना चाहेंगे, हाथ मुंह धो ले, तब तक तुम भौतरी से बातचीत करते रहो, अभी आए। चलो जी,
3: चलो।
1: लड़ना मत भौतरी।
0: गए, आए।
4: तुम क्यों चिंता करते हो, तुम बैठो ना।
0: आप यूं मुझे घूर घूर कर क्या देख रही है, क्या क्या कभी आपने जिंदा आदमी नहीं देखा?
4: सुनो, क्या तुमने कभी बकरा कटते देखा है?
0: जी जी जी जी, जी, जी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं।
4: छुरी जब बकरे की गर्दन पर चलती है तो कितना दर्द से बिलबिलाता है, मुझे बहुत मजा आता है।
0: अरे राम राम, कन्या होकर ऐसी बातें, अरे रोड़ा और नरक मिलेगा तुझे।
4: सुनो जी, मुझे तुम्हारी शक्ल उसी बकरे जैसी लग रही है।
0: जी मैं और बकरे जैसा, और खुद को देखा है कांच में, कौड़ी भैंस।
4: आईना? आईना तो हमारे घर में है ही नहीं, डैडी बहुत चिढ़ते हैं ना, एक बार नानी के घर देखा था, देखते ही टूट गया।
0: बड़ा खुशकिस्मत था, टूटकर मुक्ति तो मिल गई। हाँ
4: सुनो, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है प्रियतम?
0: देखिए देखिए, आप थोड़ा दूर से हैं। सुनिए, आपने ये नाखून क्यों बढ़ा रखे हैं?
4: जानी, ये तुम्हारे लिए है, प्यार करूंगी तुम्हें।
0: नहीं नहीं नहीं, हे मां रक्षा करो मेरी।
4: डरते क्यों हो, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा के लिए। सुनो, एक गाना सुनाऊं?
0: गाना गाना दूर रह के।
4: मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यू ही नहीं दिल लुभाता कोई, लुभाता कोई।
2: अरे अरे अरे अरे अजाए, अरे कहाँ चले?
0: जी वो आप लोगों के लिए चाय लेने हैं।
2: अरे चाय भौतरी बनाएगी, जाओ भौतरी।
1: तुम हमारे पास बैठो।
0: जी सुनिए, आप लोग अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं?
2: हाँ हाँ हाँ हाँ, पूछो।
0: जी दरअसल मैं आप लोगों को पहचान ही नहीं पाया, भाई आप लोग कौन हैं, मुझे कैसे जानते हैं? क्या आप अपनी लड़की के दिमाग का इलाज कराने आए हैं?
1: अरे बेटा, हमारी बिटिया का दिमाग 110% ठीक है।
2: सुनो अजय, मेरा नाम भृंगराज है और ये मेरी पत्नी सुनंदा, और हमारी प्यारी बिटिया भौतरी को तो तुम पहचान ही गए होगे।
1: अरे बेटे, हम तुम्हारे खानदानी समधी हैं, तुम्हारी चाची, तुम्हारी मौसी की बहन, तुम्हारी फूफा की साली, अरे सब की शादी हमारे खानदान में हुई है।
2: और अब हमारे खानदान का लेटेस्ट प्रोडक्शन भौतरी, प्रस्ताव तुम्हारे सामने है।
1: बोलो बेटा, निकाह कबूल है?
0: जी मैं आया एक मिनट में, मुझे ऑफिस का काम याद आ गया है।
4: अरे अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? मैं कितने प्यार से चाय बनाकर लाई हूँ, चीनी

0: की जगह नमक, पत्ती की जगह काली मिर्च और पानी की जगह केरोसिन। पीकर तो देखो।
1: अरे चाय पिलाना अपना पिताश्री को। मैं चला।
2: अजय शुभ, आपको बड़ी शुभ बोले ऋषभ।
1: हे भगवान, जब पूरे दिन आते हैं ना तो छप्पर फाड़ कर आते हैं। चल बेटा अजय, खा ले डांट। मैं कम इन सर।
3: यस कम इन। आओ अजय, आओ बैठो।
1: जी।
3: और सुनाओ अजय, क्या हाल है?
1: मुझसे पूछ रहे क्या सर?
3: क्या बात है अजय, आज बड़े नर्वस मालूम हो रहे हो। रामलाल, दो कॉफी लेके आ जाओ। हाँ तो अजय, हम लोग विषय पे आ जाएं। अजय, तुम्हारा प्रमोशन ड्यू है ना?
1: जी।
3: बधाई हो।
1: जी थैंक यू सर।
3: हाँ देखो अजय, दरअसल मेरा एक दोस्त है, शायद तुम्हारे यहाँ ठहरा हुआ है। उसकी एक बहुत स्वीट सी लड़की है, क्या नाम है उसका?
1: भोत्री।
3: तो बहुत पैसे वाला है मेरा वो दोस्त, सारा घर भर जाएगा तुम्हारा, सारे सपने पूरे हो जाएंगे तुम्हारे।
1: सर, पूरे भारत में क्या मैं अकेला ही कुंवारा रह गया हूँ सर?
3: तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं अजय? दिमाग से काम लो, जाओ मुझे सोचकर जवाब देना। और सुनो
1: जी,
3: मुझे ना सुनने की आदत नहीं है।

0: सो रहे हैं घोड़े बेचकर, जान बची, मैं भी जल्दी से सो जाऊं।
1: आ गए अजय बेटे।
0: जी मैं तो सो रहा हूँ, बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। अरे अरे आप मेरी टांग तो छोड़िए, अरे मैं कोई भाग थोड़े ही जा रहा हूँ।
2: बली का बकरा सुनो, क्या तुमने कभी बकरा कटते देखा है?
0: जी, जी, जी, जी।
2: बली का बकरा जब बकरे की गर्दन पर चलती है तो कितना दर्द से बिलबिलाता है, मुझे बहुत मजा आता है।
0: अरे राम।
2: बली का बकरा, बली का बकरा,
0: मेरा गला।
1: अरे अजय बेटे, अब क्या हुआ?
0: गला।
3: प्रियतम,
0: गला।
3: प्रियतम क्या हुआ बेटे जी? क्या हुआ प्रियतम?
0: कुछ नहीं, बचपन से ही मुझे दौरा पड़ता है, इस दौरे के दौरान मुझे गला दबाने की इच्छा होती है और तभी तो मेरी शादी नहीं होती है। गला, गला दबाऊंगा, गला दबाऊंगा मैं।
1: भागो, सामान छोड़ो और भागो। अब
0: अरे ठहरो, ठहरो, ठहरो, मुझे तुम्हारा गला तो देते जाओ।
4: गला, गला, गला दबाऊंगा भाई, गला दबाऊंगा भाई, गला दबाऊंगा। भाग गए, आधा सामान भी छोड़ गए, ये अच्छा हुआ। बोल बेटा अजय, बच गया ना बर्बादी से, कैसी रही? अरे बलि का बकरा खुद ही बलि चढ़ गया।
5: बलि का बकरा, अभी आपने ये झलकी सुनी। लेखक और निर्देशक थे मुकुल गोस्वामी। ये झलकी आकाशवाणी जयपुर की प्रस्तुति थी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं प्रीति शर्मा के साथ। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनू निगम, हरिहरन और अनुपमा देशपांडे के गाए इस गाने से। इसे हमने लिया है फिल्म शरारत से। गीत समीर का है, संगीत साजिद वाजिद का।

आती जाती है, मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं। जान जाओगे, मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं। ये बताएंगे बेटा कल तुझे।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में कांटे फिल्म का गाना, गीत देव कोहली का है, संगीत आनंद राज आनंद का।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: श्रोते हो, दररोज संध्याकाळी 5:30 जरूर ऐका कार्यक्रम पुन्हा आय केअर सहंज धारा। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत पुन्हा आय केअर मिशन हेल्दी आईज।
3: दररोज संध्याकाळी 6:15 जरूर ऐका सुमधुर गीतांचा कार्यक्रम। डॉक्टर परीक्षित फेगडे गीतांजली, प्रायोजक डॉक्टर परीक्षित फेगडे यांचे सिद्धिविनायक क्लिनिक। आरोग्यम नमोस्तुते। सांधेदुखी आणि गुडघेदुखीवर रामबाण उपचार।
4: पुणे पीपल्स बँक प्रस्तुत गजर हरिनामाचा

0: दररोज संध्याकाळी 7:30 ते 8 जरूर ऐका. प्रायोजक पुणे पीपल्स बँक, विश्वासाचा हात आणि मोलाची साथ.
1: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है. आइए सुनते हैं ये संदेश.
2: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा.
3: फोक कहते हैं आमद को. हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाते थे. उनको उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था. तो गडरण भवन सु आयो विनायक करो ये नीतिरी मार दिलीप सेन जीव धारिया.
2: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर. तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन.
1: कार्यक्रम का अगला गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में है. फिल्म का नाम है खाकी. गीत समीर का है, संगीत राम संपत का.

0: आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह, निहिरा जोशी, देशपांडे की आवाजों में किल दिल फिल्म का गाना। गीत शाद अली का है, संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

आइए अब सुनते हैं हेट स्टोरी 4 फिल्म का गाना, जुबिन नौटियाल और अमृता सिंह की आवाजों में, गीत मनोज मुंतशिर का है, संगीत मिथुन का।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से

इस समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया।

0: रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
4: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
5: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने